0: Tiri sathu ko wa tiri tenba ko khabar hinli Frank Andrew tiri sathu ko tine kayun chonte len lekete lega tore tendala rakete I kota khadinya tungu I tiri unit tenek enya yun tenet sa kuni ti hitu bekete huwa ongo
1: dalle ni mini ate tingo wa tiri sikha I thame tere di chon tene sana te de asin ko wa sau se te 1 year I gola tena khani ko wa sau se te तो जो गलत है ना से असली को सही गलत है ना जो दिखो का गलत है ना देखो तोरे आदानी ने फिर को ना दिए फिर जो ये जो नए दिन डिस्ट्रिक्ट ये कुंसी हनी होली ऐसा कुंस तेरा सही गलत है ना ये जो कोई चिल्ला कुंते सिखे ना दीजे बिले ले कुंते इंदा तेरे का कोई चिल्ला कुंते तेरी हनी दावों तेरी ग्रैंड चीफ इन निकले तेरे को डीजे क्या ना किया करी चिल्ला कहते तेरी लैंड टीम तानी दावे के गला दासे खानी दावे को टीको लिए दाई एक कम्युनिटी या को लासे आज जोने को वैगे या किन लिसे आज जोने देते ना ऐसे द डिस्ट्रिक्ट द कम्युनिटी खाने को गा को के वैगे लिए इधर ग्रैंड चीफ इन लिए कुछ दे अगरी चिल्ले कहते तने तने तने कम्युनिटी का वे के ऐकारी टी तने ही की टी गए तेरे कुछ दे अगर ते दुख तो को फेरेले कहते ले लैंड सिंग वैसे तने का ग्रैंड चीफ इंजीनियर से तेरे का नाता को फेरे तो को रावे पिता तो को तेरे वेदा लैंड सिंग कुछ चले ये उसे दुख तो खा कहते ले खाने को ले तेरी माय फ्रेंड एसएसआई चेयर सेम लैंडिंग वाला को क्या बता ही ली इसे ताने दा लैंडिंग वाला को उसे बोना है को तेरो कहने को तो तेरी ना है निका असिया तार कहेगा लाइट ताने दिस दिस ईयर से तेरी आर्डर प्रोग्राम प्रोग्राम कहने से ना है नितु जो सातु ताने काउंसल पे कहेगा लाइट ताने फॉर द रीजन हियर जस्ट ऑन हाइगा रीजन से इसे आर्डर प्रोग्राम होता है इसी तरह के एमएस स्कूल जाना होता है नहीं मैं खाने को गासे संपा कर ला ट्रेनिंग खाने को ये को गासे संपा नहीं किया जरा इसी तरह तासे जैसे को गाजों तेलियों दे ताने दा को गाजों तेला तेरी एरल एजुकेशन स्कूल आना तो तीस नहीं वैरे पहला से को केवल उसे ये तरह से कुछ ना चहिती आता होती की दिया अंडर आर्डा प्रोग्राम के को इधर इसी को आजों द जितने सोचे स्कूल जाना होती किन्हें वैगले इसी को चिना इतनी लेता को आजों द तेरे ने कल बिल्स तो तोड़े संपादा को कुछ दिया कुछ तेरी जो कौन था को आजों ना कोले कुलिया को द 1970 जो आजे दिले ये जो दिल्ली को जे कुली कराते कुछ तो टेरिटोरियल गवर्नमेंट ने थाकने दिए को जे संपादा जो कुछ दिलाओ ते कुछ ऐसे ऐसोने संपादा ताना है जी तने के था स्कूल जाना होती कि नहीं बनाने को ले ऐसी सिंह पॉलिसी सिंह कुछ ने है अन्यों ते तेरे छात्र रे ग्रेट हॉल तने चले रे अपग्रेडिंग आ स्कूल जा चितिया क्या ताना चितिया रे ऐसी सिंह कुछ ना इतनी आताउती की थी ये खाने को आगो के रह चले आताउती इंदा ये का अपग्रेड या नाउती की नहीं मैं कोली मानी कुछ ना इतनी दिन ने जो आगे थी हो तो तीरा खाई तले कुछ ऐसी तने के का स्कूल आगे थी यादे का संपा कुछ ना इतनी खाने को अपग्रेडिंग आते तो ठीक थी ये यूज़ा चने चने फिर ओल्यों ते ये आर्डर प्रोग्राम वाले ता ये सी का सम वे तानी ता ना ताऊ चे वेल्यों ते कुले गवर्नमेंट ये बे को प्रोग्राम होता है देते नहीं इसी को के वेल्यों ते ता देते ने कंट्रोल के फैने तमिल कुले ता ये पर आसान है फैन रहे सी ता ये